अष्टपदे कर्ण करावन कर्ण जोग जो तिस पावे सोई होग खिन में थाप थापन हारा अंत ने किश पारा वारा हुक्मे धार अधार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभु पावे मानक गत पावे प्रभु पावे ता पात्र तरावे प्रभु पावे बिन सास ते राख प्रभु पावे ता हर गुण पाख प्रभु पावे ता पातत उधार आप करे आपन विचार दोहां सिरां का आप स्वामी खिले बिग से अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर ना आवे को मानक ते क्या होए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किछले जो तिस पावे सोई करे अन जानत बिख्या मैं रचै जे जानत अपने आप बचै भर में भूला दे दिसतावे निमक माए चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवे ते तात्काल दे दिस प्रगटावे जाको अपनी करे बगसीस ताका लेखा न गने जगदीस जियो पिण सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बाणत आप बनाई नानक जीवे देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष भावे सोई फुन थियो कबू ऊच नीच में बसै कबू सोग हरख रंग हसै कबू नैंद चैंद व्योहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबू नृत करे बपात कबू सोए रहे दिन रात कबू महाक्रोध बिकराल कबू सर्ब की हो तरवाल कबू होए बहे बड़ राजा कबू पिखारी नीच का साजा कबू आप कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे जो प्रभ राखे ते वही रह गुर प्रसाद नानक साच कह कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सदक साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमे परमिया नाना रूप जो संगी दिखावे जो प्रभ पावे तिवे नचावे जो तस पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबू साध संग ते हो पावे उस स्थान ते बोहर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग जो जल में जल आए खटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए बिसराम नानक प्रभ कै

गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बेष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन मरे बो जोन भरम आवै तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकीहा मुकत आगे सुख पावे धनवंता हुए कर गरबावे त्रिण समान कज संग ना जावे मोलस्कर मान कूपर करे आस पल पीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दर गए परवान कोट कर्म करे होत हरे सरम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फेर फेर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं दरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे सर्ब की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जा बेजाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बेरी मीत तब लगने चल ना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देस जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे लख कोट थावै त्रिपतन आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करै नै त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्ब सुख होए बड़भागी किसे प्रापत होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा बिचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप आप प्रभ सोए जो कुछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हु कै संग बूझे देखे करे बबेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक साद ही रहा समाए आप उपदेसे समझे आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन बिस्थार सब कछ उसका हो करने हार ओते पैन कहो किश होए थान थनांतर एक सोए अपने चलते आप करने हार कोत करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत कि निंदा नानका बोहर बोहर अवतार अष्टपदे संत के दुख न आर जा घटै संत के दुख न जमते नहीं छुटै संत के दुख न सुख सब जाए संत के दुख न नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखे ना कोए संत के दुख न थान प्राइट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग जीव लवै संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगद जोन करमाए संतन के दुखन तृष्णा मैं जलै संत के दुखन सब को छलै संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निचाहे संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत भावे ता ओए पी गत पाहे संत का निंदक महा अत ताही संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा।

सो परसन अष्टपदी अविनाशी ब्राह्मण में राख मान की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बकसंद सा तेरे की चरणी पाहो नानक कै मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन पन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अंदरू मंगल सद जाक सर्ब थोक सुनिए घर तक राज में राज योग में जोगी तप में तपिसर गृहत में भोगी त्याए तय भगते सुख पाया नानक तिस पुरखा किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्या वैसे तय गुण में जाको परमाए जन मरे फिर आवे जाए ऊंच नीत के अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना बिद कीनो बिस्थार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जानत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जैसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माए समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत भजन साधु उपदेश सत ते जन जाकै हृदय प्रवेश सत निरद बूझे जे कोए नाम जापत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जने अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार और न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पै बिस्माद जिन बूझया तस आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दो काटन हार जाके संग तरह संसार जन का सेवक सोवड भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब तारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझन हर को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जन मान्या करन करावन तिन मूल पछान्या जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपौ होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना बहत माहले बहत गडाई ताको पहनना कहना जाए बूझे बूझ नहार बबेक निरान मिले नानक ए

ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग, सेवक प्रपालन हारा, सेवक ही राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धर, नानक सो सेवक सा समार, अपने जन का पर्दा ढाक, अपने सेवक की सार पर रख, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात रख, ताकि गत मित कोय न लाख, प्रभ के सेवक को न पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दे देश प्रगटाया, नीकी कीरी मैं कल राख, भस्म करे लश्कर कोट लाख, जिसका शासन काटते आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बपात, तिसके करत बिरथे जात, मारे न राखे अवर न कोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख वडाणी, बारंबार बार प्रभ जपिय, पी अमृत मन तन तृपिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप ताने, मन तर नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जह बादन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात, करे भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने सो रह समाए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कै एक न जानो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन रे मन मेरे तिन की ओटले, मन तने अपना तिन जन दे, जन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता, तिसकी सरन सर्ब सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर स्यान अपस

राष्ट्रपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक कोटे को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृढ़ महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पूर्ण नहीं डुलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कह संग परे सन आन सब त्याग अंतर प्रगस आन दिन लेव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मन सा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेव किनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन मरण दुख भ्रम गया ऐश पुण्य सरदा सब पूरी राव रया सद संग हजूरी जिसका साथन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सुख बिसरे जे काल न पान सुख बिसरे जे किया जान सुख बिसरे जिन सब किश दिया सुख बिसरे जे जीवन जिया सुख बिसरे जे अगन मै राख गुर प्रसाद को बिरला लाख सुख बिसरे जे बिखते कड जन्म जन्म का टूटा गांड गुरपुरे तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भगती तन हो सी छार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए बिसराम सगल दुखा होवत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाहो मंत्र अंतर एही सुवाओ नेत्र उपेक दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बार दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बकसंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्ब घटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे तिस सो होए पनीत जो जो जपे सो होए पनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरनी शोभा धनवंत हिरदे बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्ब सुख नान।

राष्ट्रपति जब अकारे काश ना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमात जब इसका वर्ण चहन न जापत तब हरक शोक किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप वरती जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किस को गनी जब एके हर अगम अपार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहस पाए तब शिव सख्त कहो कित ठाए जब आपे आप अपने ज्योत तर तब कमन निडर कमन कत डर आपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही चर जा नानके अपन रूप आप ही पर जा जे निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बिन मेल कहो क्या तोता जय निरंजन रंग का निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत को कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे ते किसे पूख कमन त्रिपतावे करन करावन करने हार नानक करते का नाहे समार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सत भाई जे सर्वकला आपे पर बीन ते वेद कतेव कहा कूचीन जब अपने आप और थर तो सगन अप सगन कहा बिचार जे आपन ऊच अपने आप नेरा ते कौन ठाकर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जे अचल शेद अपीद समाया उहां किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश तह गुण का नाही प्रवेश जय एके एक एक भगवानता कहते कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपने आप पतियारा ते कौन कथे कौन सुनने हारा बो बेअंत उचते ऊचा नानक आप इसको आपे पहुँचा जय आप रचे प्रपंच आकार तय गुण में कीनो बिस्थार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल होम मोह भरम पै भार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान आपन खेल आप कर देख खेल संकोचे तो नानक एक है जय अवगत भगत आप जय पसरे पसार संत प्रताप दुहू पाका आपे तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपे कोद करे आनंद चो जे आपे रज भोगन निर्जोग जिस भावे तसे आपन लाए लावे जिस भावे तस खेल खिलावे बेसमर अथा गणत अतुल जो बुलावो त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आपे काबे थार जात भावित श्रेठ पाए अपने भाने लय समाए तुम ते पिन नहीं कछ होए अपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तातका बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंदल सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कह को जाए सब सिर एक निरंजन राए जी की जगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दा सदा बलहार पूर्ण पूर हे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो बेआप प्रतपाले जीन बपात जो जो रचो सो तिसे त्यात जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हर नानक एक जान्या जन लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए सेव को सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई है ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदन पूजे गौर के पैर ये लोक सुखिये पर लोक सहेले नानक हर प्रभ आपे मिले सा संगमल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तद करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ
प्राण तन का एह सवाहो आठ पैर प्रापे खो नेरा मिटे अग्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदे सिर दे बसावो मन छे नानक फल पावो हलत पल दे लेहो सवार राम नाम अंतर और तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साच परीख्या मंत्र नाम जपो लेव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच उपार करो वापारी दरगन वेखी पतमारी एका टेक रखो मन माहे नानक बोहर न आवे जाहे ते ते दूर कहा को जाए उभरे राखन हार त्याए निर पौ जपे सगल पौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तसना ही दुख नाम जावत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तहजन को कोई न पहुंचन हार सर उपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पुरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेगत उदल श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे होत निहाल जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पै अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बनास हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग यंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक सघट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम सुन समाद अनहत तै नाद कह न जाई अचार्य बिस्माद तैन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट ब्याप रहा भगवंत धर्म माए आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आग्या तैसा कर्म पौन पाणी बैसंतर माहे चार कुण दे दिसे समाहे तेह ते भिर नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख ससिर सूर नखत्र मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप डोल न कब हो डोले सर्व कलाकर खेल खेल मोल न पाइए गुण अमोल सर्व ज्योत में जाके ज्योत धारियो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम कर नास नानक तिन मैं एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हिरदे सब धर्म संत जना सुने सुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तैसकी रहत सत भजन साधु सब कहत जो जो होई सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे तां करे विस्थार तिस भावे तां एक अंकार अनकला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कौन नेट कमन कहिए दूर आपे आप आप भर पूर अंतर गात जिस आप जनाए नानक तेजन आप बजाए सर्वभूत आप वरतारा सर्व नैन आपे कनहारा सगल समगरी जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सबके मत लिपतो रहे सबके मत अलिपतो रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे आग्ञा आवे आग्ञा जाए नानक जा पावे तन लय समाए ऐते हुए सो नाही बुरा ओरे कहो किने काश करा आप लाकर तू त्यात नीकी आपे जन अपने जी की आप साज धारी सब साच ओत पोत आपन संग राच ताकि गत मत कही न जाए दूसर होए तो सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक एहो जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मलाए लय प्रभ सोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जागत तराया जन आवन का एह सवाओ जन के संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा।

के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चंद आसनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सा संग अगन सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परम आनंद नरक नवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाह दवा जय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय परगटे गोपाल महंत कै माथे नानक उदरे तैन कै साथे सरन जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पै सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पै गुरदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद तेरा दया प्रभ धारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की औतत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोहे सब ते उज पाए स्थान बोर न होवे आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए बिखेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप योग प्रव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब के मध सगल ते उदास सुंदर चतरता तका बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने ए हुन दान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सगल मतंद केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मत कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत ते जन आवे हर प्रभ चीत जन मन ताका दुख निवारे दलभ दे तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उज

के कर्म सब ति उचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुख मनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली मोहला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावनाइयां शब्द तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब वसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे सहबा क्या नाही कर तेरा करता तेरे सब किछ जिह दे सो पावे सदा सिव तसलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटो जिह दियां ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तिद घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया धुर करम पाया तुद जिन कौसे नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुखोवा तित घर अन हद वाजे अन सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया पर पूरे बिनवंत नाने गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सदगुरु धन धन साहिब श्री ग्रंथ साहिब जी आप जे चरण कमलों पास अरदास बेनती जोधड़ी है जी आप दे दर कर दे प्रीतवान परिवार सरदार रजिंदर पाल सिंह सोढ़ी ते बीबी तजिंदर कौर वालों अपने पोतरे मनिंदर सिंह दामनी सोढ़ी अते अपने बेटे राजदीप सिंह दे जन्मदिन की खुशी विच आप जी दे चरणा नूं परसदिया होया आप जी पवित्र बाणी सुखमणी साहब दे जाप करवाए परिवार वालों 40 पाठ सुखमणी साहब दे आप भी किए गए बाणी पढ़दिया गोच बैठदिया बेंत भुला चुका हो गया अनजान बच्चे समझ के मुआफ करना पढ़ी सुनी दे बाणी दा भाव परिवार दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना तंदुरुस्ती दी दात चरणा दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शिश करना बच्चियां नूं उच्ची विद्या दा दान अते माता पिता दे आग्याकारी बनाउणा सरदार रजिंदर पाल सिंह सोढ़ी बीबी तजिंदर कौर अते मरिंदर सिंह दामनी सोढ़ी अते राजवीर सिंह दे सिर दे उत्ते मेहर भरिया हथ रखना गुरसिखी जीवन बख्शिश करना बाणी बाणे नाल बाणा विश्वासां किसे नाल सिखी अमृत वेले दी संभाल गुर चरणा दा प्यार गुरसिखी जीवक बख्शिश करना आप दियां बख्शियां होईयां दातां विचों आप जी नूं सोहणे रमाले हाजर कीते गए ने आप अंगीकार करना परिवार दे लोक परलोक विच पढ़दे कज लैणे पंचमी कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर परवान होए परवानिया प्रसाद साह संघ दे रसिन लै कोवे जो छके तेरा नाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहिगुरु जपे जिन्हां खजानियां विचों रस्तां बसाईयां ने सो खजाने भरपूर करने काल कंटक दूर करने कमाईयां विच बरकतां पाउणियां जी परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला बख्शिश करनी जी सुखमणी साहिब जी दे जाप दी अरदास छे पड़े आनंद साहिब जी की अरदास अखर वादा घट बुलज को माफ करनी हाजरी दर कर सचगुण के परवान करनी दरों करो पावन अटल हुक्म नामे बख्श के किरतार्थ करो भुला चुकां दी खिमा से

हर हर चरण हृदय औरत हरे सिमर स्वामी सत गोरे अपना कार्य सफल हमारे। हर हर चरण हृदय औरत हरे सिमर स्वामी सत गोरे अपना कार्य सफल हमारे। रहाओ पुन दान पूजा परमेसर हर कीरत तत् बिचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजहारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

निचारे गावन तदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तहरे से तदनो गावन जो तद पावन रते तेरे भगत रसाले होर कहते तदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बीचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई ऐपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई

गुरु साहिब जी एक ओंकार सत गुर प्रसाद अगम अपार अनंत गुर अवगत अलख अपीव पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतगुर नानक देव सतगुर नानक देव देव देवी सब तिहावे नाद बाद बिस्मात राग रागुण गुण गावे सुन समात अगात साध संगत सपरंपर अबगत अलख अपीव अगमित अपरंपर हर की वडियाई हो आख ना साकं हो मूरख मुगदनी जान जन नानक को हर बख्श लै मेरे स्वामी सर नागत

जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद राम सिमर श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कार नाओ निध आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तर के बोलना जी। हे निमाणियां दे मान ने ताणियां दे ताम ने ओटियां दी ओड़ ने आसरियां दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जिया दे हजूर उदास बेनती है जी। आप जिया ने कृपा रहमत की है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मनु के दर्शन दीदार बख्शे हैं। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान की दी संपूर्णता प्रंत आप जिया के पावन स्वरूप के सुखासन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना। आपके भाणे दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहना। आपके भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेल दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दर्शन दीजय खोल के बार, तुम तन तनि उदार त्यागी, सर्वनन सुनियत सुजस तुमार, मांगू काहे रंक सब देखाओ, तुझ ही ते मेरो निस्तार।

अगर राती वर्त नेम करे बाबांती नहीं दुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपिय एक बार नौखण प्रथमी फिरा जर जीवे मह उदास पीसर थी वह अगर माय हमद प्राण कन कसब है भरपूमदार नेवली कर्म करे बव आसन जैन मार्ग संयमत साधन निमख निमकर शरीर कटावे तापी हमें मैल ना जावे हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर देश उठा गर्भ गुमाना मंत हुटाए सोज करै दिन सुर रात मन की मैला तंते जात इस देही का भाव साधना करे मंते कभू न बिखिया ठर जल तो वह बोध है अनीत शुद्ध गाय काछी पीत मन हर के राम की महिमा ऊंच नानक नाम दरे पतत भाव मूच बहुत सियाण जमका भाव व्यापै अनक जतन कर त्रिशन्ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझाए कोट भाव दृगे नहीं सजाए छूट सुनाही ऊब पयाल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डान गोविंद भजन बिंद नहीं मान परखा।

या कौडी संग रचा सा छोड़ झूठ संग मचा जो छड़ना सो अस्तर कर माने जो मन सो दूर पर अन्न छोड़ जाए जिसका सराम कर संग सहाय तुस पर हर जनल लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत पसम संग हो अंध गुप में पतत बिकराल नान काढ़ लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मान जात लोग बचारा करे दिन रात बाहर बेखंदर मल माया शब सनाहे गश करे शपाया बाहर ज्ञान ध्यान शनान अंतर व्यापे रोब स्वान अंतर अगन बार तन स्वाह गल पाथर कैसे तरा अथाह जाके अंतर बसे प्रभु आप नानक ते जन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लेह ओढ़ निभावे कहा बुझार्थ बुझे ढोरा निष्कय तो समझे पूरा कहा बिशन बद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो उस गबन करतार करुणा मैं दीन बेनती करा नानुक तमरी कृपा तरा संग सहाय सु आवै ना चीत जो बह राई तास्यो प्रीत बलुआ कह ग्रह पीतर बस अंध केल माया रंग रसा दृढ़गर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महालोभ त्रो याहु जुगत बयाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम बह अरदास जियो बिन सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख नेरे कोई ना जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी तुम ते हुए सो आज्ञाकारी

ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहिता ब्रह्मज्ञानी का वो याचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभाव ब्रह्मज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श भाट भागी पाइय ब्रह्मज्ञानी को बलबल जाइय ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानिया परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय अदा खियर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंतरा पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब उपरहाथ

संगा दुखी मा अहंकारी संगा दुखी सदा बेकारी संगा दुखी जन्माय मराय संगी दुखना सुखते ठराय संगे दुखी को नाई ठाव नानक संत भावित लय मिलाए संगा दुखी दबीजते टुटाए संगा दुखी किते काज ना पहुंचाय संगे दुखी को ध्यान परमाइए संगा दुखी उजड़ पाइय संगा दुखी अंदर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ किश नाहे आपन बीजा पे ही खाए संत के दुखी को वरना राखन हार नानक संत भावित लय उबार संगा दुखी इं बिल लाए जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संगा दुखी भुखा नहीं राजा जो पावक इंद्र नहीं त्रापै संगा दुखी छुट अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संगा दुखी धर्म ते रह संगा दुखी सदमिथिया कहत कीर्तनंदा का तुरी भया नानक जोत सभावे सोई थिया संगा दुखी बिगड़ू पोए जाए संगे दुखी को दरगह मिले सजाए संगा दुखी सदा सहकाइय संगा दुखी ना मराय ना जीवाइय संगे दुखी की पुजे ना आसा संगा दुखी उठ चले निराशा संगे दुख ना दृष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा कोय नानक जाने सच्चा सोय सब कर तिसको करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की सत करो दिन।

करें। नानक सो सेवा गुरु की मदले, बीस विश्वे गुरु का मन मानना, सो सेवक परमेश्वर की गत जानना। सो सतगुर जिरदे हर नाऊ, अनक बार गुरु को बल जाओ। सर्वनिधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म अरंग राता। ब्रह्म जन जन्मे पार ब्रह्म, एक आप नहीं किस परम। सह स्यान बलया ना जाइय, नानक ऐसा गुर बटभागी पाइय। सफल दर्शन पेखत पनीत, प्रसद चरण गत निर्मल रीत। पेट संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुनकर वचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने। उरा गुरुखे हो जाका मंत्र, अमरदृष्ट पेखे हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावित लय मिलाए। जेह बाए गुस्तत नेक, सतपुरख पूर्ण विवेक। कहो बोलना पाओ छत प्राणी, अगम अगोचर ब्रह्म निर्वाणी। निराहार निर्वैस सुखदाई, ताकी कीमत कने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरे। सदवले हारी सदगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रब जपने। ए हर उस पावे जन कोहे, अमृत पीवे अमृत सो होए। उस प्रका नाहीं कदे बिना, जाके मन प्रगटे गुमतास। आठ पैरर का नाम ले, सजब दे सेवक को दे। मोमाया के संगना ले, मन में राखे हर हरेक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरमो दुख तैते नासे। तब तमाय ठांड बरताई, अंत बै दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिठिया देसे, साधु के पूर्ण देसे। पाव जुगा निर्भय बसे, सगल ब्याद मंते खै नसे। जिसका सातन कृपा धारी, सात संग जप नाम मुरारी। तित पाई चुके ब्रह्म गमन सुनान, घर हर जस श्रवण। निर्गुण आव सरगुण भी योही, करा धार दिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आ बनाए, अपनी कीमत आवे पाए। अरबिंद दूजा नाई कोय, सर्व निरंतर एको सोय। ओत बोत रव्या रूप रंग, भय प्रगा साध के संग। रच रचना अपनी गलतारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ ना चाले बिन भजन, बिखिया सगरी शार। हर हर नाम कमावना, नानके धन सार। अष्टपदी संजना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर भाव सब मीत विसारु, चरण कमल हृदय में उतारु। करण कारण सो प्रभ समराथ, दृढ़ कर गह हो नाम रथ। ए तन संचो हो भगवंत, संजना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उड़ता में, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नृत बांछे में, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा बज हर की सरणी। अनुगभावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर अवखद राय। सर्व निदान में हर नाम निदान, जब नानक दरगे परवान। मन प्रबुद्ध हर कह राय, दर्द स्थापते आ बैठाए। तागो बिघन न लागे गोए, जागे हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाव, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पावन से पूर्ण हुए आस, भगत पाया तम प्रगास। तत्कर जाय बसे बनासी, कहो नान काटी जम भासी। तद विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवा गमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। यो रतन जन्म गावे उदार, हर हर सिन प्राण आधार। अनुख भावना छुट न हारे, सिमरत सास्त वेद विचारे। हर की भगत ग्रो मन लाए, मन मन छत नानक फल पाए। संगना चाल तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटमर बन तंते, कहो तुम कमन सनाता। राज रंग माया विस्तारंते, कहो कमन छुटकार। आसस्ती रथ सवारी, झूठा डम झूठ पा सारी। जिंदी तस बुझे नाम, बेगाना नाम विसार। नानक पछताना गुर की मतू ले, याने भगत बिना बहु डुबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किलमिख जाहे। आप जपो अबरा नाम, जबावो सुंद गैद रैत गत पावो। सार भूसा तिर को नाम, सह सुभाहे नान गुन गाओ। गुण गाव दरी उदर समैल, बिन जाय हो मैं बिख फैल। होए चंद बसे सुख नाल, सास ग्रासर नाम समार। छाड़ सियानम सगली मना, सा संग पावे सच तना। हर पुंजी संज करो व्यवहार, यहाँ सुख दर गया जाय कार। सर्व निरंतर एको देखो नानक, जाके मस्तक लेख। एको जाप एको साल आ, एक सिमर एको मन आहे। कसके गुण गाओ अनंत, मंथन जाप एक भगवंत।
ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅਨੰਗ ਵਿਸਤਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ਰਾਤ ਬਰਾਸ਼ਦ ਗਏ

पष्टपदी। जब कार्य काशना दृष्टिता पापन तब कहते हो तब धारी अपन सुन्न समाद तब बैर ब्रो किस संकमा जब इसका वर्ण चेहन्ना जापत भर सो कहो किसे व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कांक सोभत ब्रह्म अपन खेला वर्तीजा नान करने हर न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जो धरै तब कमन ने डर कमन गत डराए आपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन था जन्म मरण कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत रेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आपिया चर्जा नानक अपन रूप आप ही प्रजा। जय निर्मल पुरख प्रकृपा धोता तय बिन मैल कहो क्या धोता। जय निरंजन निरंकार निर्माण तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल चित्र लगत कहो कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किसे भूकम द्रवतावै करण करावन करने हा नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्वकला पे परवीन तय भेद कथेब कह कऊ चीन। जब अपने आप आप रुतार है तो सगने अप सगन गां विचार। जय अपनु चपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिये चेरा। बिस्मन बिस्मराय बिस्माद नानक अपनी कत जानू आप। जा शल अशेद अभे समाया।

धर्तमंते भव जाए सज व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभाए खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहर न आमे जाहे तिस्ते दूर गांगो जाय बरे राखन हार ते आए निर्भाव जपे सगल भाव मिटे।

देहि में इसका विश्राम। सुन समाद अनत नाद कहना जाई आचार्य विस्माद। तीन देखिया से आप दिखाए नानत जन सो जी पाए। सुंदर अनंत गड़गड़ व्याप रहा भगवंत। तरण माया आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बंधन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी अगत ऐसा कर्म। पौन बाणी वह संतर माहे चार गुण दसे समाये तस्ते भिन्न ही को ठाऊं।

अष्टपदी पूरे गुरुका सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन त्रिकुद्रय चेंद्यास अनित्यागो तरंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेंती करहो सा संग अगन सागर तरहो अर तन के परलियो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक गुर बजाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी का हे आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत हो दुधार आप तरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन अंध करे प्रभु गा जाय प्रगटे गोपाल मांद के माथे नानक उतरे तिनका साथे शरण जोग सिंह सरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरे अमृत नाम साध संगलैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेवा अंजाल बिगाड़ते रहते राम नाम सुंदरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निर्भी खेब हमारी प्रभु की सतगुरु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब देव ज पाए स्थान बाहुर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रतनावत निध बुद्ध ज्ञान सर्वदाय सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब

निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दयतया कोय ना सुजय जेतस गुण कोय करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धर तवले आकाश सुनया दीपलो पाताल सुनया पोहे ना सकै काल। नानक भगतां सदा विगास सुनया दो पाप का नास सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनया मुख सलाहण मंद सुनया जो जुग तन भेद सुनया शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगतां सदा विगास सुनया दो पाप का नास सुनया शासन तो ज्ञान सुनया अर्थ का सुनान सुनया पड़ पड़ पाप है मान सुनया लागे सहज ध्यान।

निरंकार असंख्य नाव असंख ताव अगम अगम असंख लो असंख्य सुर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगा

एकामाय युक्त व्यायतले परवाण एक संसारी एक भंडारी कलाय दी बाण जीवत पावे।

पैदाए। धर्म खंड काय हो धर्म, ज्ञान खंड काय आखो कर्म, केते बुण पणि वैसंतर केते कान महेश, केते बर में का

केते देवदान मन केते केते रतन सुमंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पाद नरेंद केतिया सुरति सेव केते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तेते नाल विनोद कोडानंद सर्व खंड के बाणी रूप तेते काढ़त घड़िए बहुत अनूप ताके गल्ला कतिया न जाए देखो कह पिछे बच जाए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सदा की शुद्ध कर्मखंड के बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता मैं मां माए ताके रूप न कथने जाए ना ओ मरे न ठाके जाए जिनके राम वसै मन माए तिथे भगत वसा कह लो करै न सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंज को कथै तय अंत न अंत तिथे लो लो आकार देव देव हुकम तवै तवकार वेख्या विषय कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बहरा तिर सुनियार वर्ण मत वेद हथियार पाओ कला गंतवताओ भांडा पाओ अमृत चाल घड़िया सब सचि टकसाल।

शेख देश और न पे जाकर रूप रेख नराग जत्र तत्र दिशा विशा वे पहले अनुराग काम नाम काम बहिन पे खत्म होने जाए शर्मा सर्वत्र मान सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन केंद्र रूप अनेक खेल खेल खेल खेलन अंत को फिर एक दे पेव न जाने जय बेद और कते रूप रंग न जात पाशो जाने कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मन बहीन चक्र बकर फिरे चतर तक मान पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही दे जाप आ देवनाथ मूर्ताप सब दे ताप परम रूप नित मूर्त पूरन पुरख अपार सर्व

अंग जाके जात पात नाम गर्भ गंजन व दुष्ट पंजन मुक्त दाय काम आप रूपा में कन उत्त एक प्रख्या तूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आदि रूप सूत अंगीन अपंग नातम एक प्रख्या पार सर्व लायक सर्व काय सर्व को प्रत्यय पार सर्वगंता सर्वंता सर्व ते अनपेख सर्वशास्त्र न जाने जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत भगत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवे वचित मत प्रसन्नता प्रसाद गुण का निवदार में मा पार आसन अपंग उपमान अंगन पर प्रकाश ने दिना ना सा जान भाव सहन सारा जान राजपानान बांधे बांधे उपमा महान इंद्रान दुर्बालान बाल रंकान रंग कालान काल्यान पुत अंग अपंग पार गुण का निवदार मन गण प्रणाम निर्भय काम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य क्रम दृश्य क्रम सर्वापन नाड्य अन्न डाड बाड्य चात्री संता प्रसाद गोविंद मुकंद उदारे अपारे हरियं करियंद नामे अकाम पुजंग प्रिया छंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दान चतुर चक्र दान चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मानिय चतुर चक्र धानिय चाचरी छंद न सतरे न मित्रे न परम न पितरे न कर्म न काय अजन्म गा जाय न चित्रे न मित्रे परे हैं पवित्रे प्रति से आदि से अदृश्य कृष्य भगवती छंद प्रसा कथते के अछिज देश के अभिज पेश के अगंज कर्म के अपंज परम के अभिज लोक के अदित सुखी के अवतूत बढ़ने की बबूत करने के राज प्रभा के तर्म तुदाय के अशोक बढ़ने के सर्वा पढ़ने के जगतंग कृतियाँ के चतुरंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुप अनुप के आदु अदेव के आप अपेव के चतुरंग बहिन के अधीन के रोजी रजा के रही मेरा है के कपा को बया भैंक गा बल गा भैंक अपुल को ना के स्वाहन साय के कारण को नैक रोजी दहन दहन के राज कर रही मैं के कर्म करी मैं के सर्वं कलिया सर्वं दलिया के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसै के सर्वत्र पेशै के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र राजा के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोख के सर्वत्र पोख के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलिम के परम पहीम के आकल अलाम के स्वाहिब कलाम के हुसन अलवजुआ तमाम में सुरसलाम सली खुदम धाम गनीमल सिक्त गरीबल परस्त बिलंदल मकान जमीन अल जमान तमीजल तमाम रजुअल निधान हरिबुल अजीम रजा की यकीन अनेकुल तरंग पेद हैं पंग जिजुल निवाज हैं गनीमल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप त्रिमुक्त बपुत परभुक्त प्रभा सुयुक्त सुधाय सुदैव स्वरूप अपेद्यूप संसद पराजय सदा सर्व साध्य समस्त सलाम सदैव काम है निर्वाद स्वरूप गाद अनूप अंगाद अनूप ओंग आद रूपे अनाश रूपे अनंगे अनामित्र पंगी त्रिकाम त्रिवर्ग त्रिभाजय अगंजे अगाध सुभंग सर्व पागे सुसर्वानुरागे त्रैपुक्त स्वरूप है अछेद अछूत है कि नरक प्रणास प्रथिल प्रभा चंद्रगुप्त प्रभा सदैव सदा है व्यपुक्त स्वरूप है प्रदुक्त अनुप है निरुक्त सदा है व्यपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रदुक्त अनुप है चाचरी छंद अपंग है नंग है पेख है लेख है परम है कर्म है राध है जुगाद है जय है अभय है पूत है तूत है नास है उदास है तंद है बंद है अपक्त वृक्त नाश प्रकाशन चिंता सुनित लिख दिख लेख पेख टाय गाय सब गंभ नील नाद नित्य सुनित जात जाद चरपर चंता प्रसाद सर्वहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंग प्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंतर्मं
Sarvam Dutta Sarvam Uttar Swaval Chanta Prasad Namanar Knasa Sadevam Prakasayanangan Surupya Pangang Baputtai Paramatang Paramatha Sudha Sarvatsatya Gasurupya Nirvas Baputtai Anangiya Namitra Pangitra Kamen Nirpangi Surupya

सदैव प्रभा जय जय भगवती चंता प्रसाद के जाहर जोर के आजरा जोरा में सुसलाम समस्त कलाम है के साहेब दिमाग के सुनल चिराग कामल करीम है के राज रहीम है के रोजी दहद के राज कर करीमल कुमाल के सुनल जमाल है गनीमल खिराज है गरीबल निवाज है हरि फुल रासुलन है कलंकंग प्रणास है सुमसल निवास है के अगंजल गनी मेहर जाय कर रहीम है समसल जवाय साहेब किराग नरक प्रणास है बहसल निवास है के सरबल कुमान अमे सुलवान है तमामल तुम जय समस्त राजी जय परंग परमेश समस्त राधिशा दे सुरा लेखा मे सुरा पेख है जमीन जमा में कुल माय करीमल कुमाल के दुर जमाल के तरंग प्रकाश के हम तो सब सुभाष हैं के हम तो सुभाष हैं के अजब स्वरूप हैं के हम तो बेपूत हैं के हम तो बसाएं के आत्म प्रभा हैं के अचलंगा नंगा के हम तो अपंग मत पर छंता प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगण मुदाम अरबर गंज हर नर प्रपंज अनगण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड

मित उदार जल थल मंड दिस्वस पंड जल थल महंत दिस्वस बेअंत अनपवनास तृत तरतु रास अजान भाव एक सुदाह।

विश्वंबर है करुणालय नृपनायक है सर्वायक है पापंजन हर गंजन हर वितापन है जब जापने कलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जसके जस है प्रियंग प्रिया छंद नम सूर्य सूर्य नम चंद्र चंद्रे नम राजे नम इंद्र इंद्रे नम अंधकारे नम ते तेजे नम बृंद बृंदे नम बीज बीजे नम राज सिंह ताम सिंह शांत रूपे नम परम तंदंग तंदंग स्वरूपे नम जो जोगे नम ज्ञान ज्ञाने नम मंत्र मंत्रे नम ध्यान ध्यान नम जुद्ध जुदे नम ज्ञान ज्ञाने नम पूज पूजे नम पान पाने नम कलाकर्ता नम शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादिंगे कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आश्वास्य नमो बांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगे त्रिकाले अनंगी अकामे गजरी छंद अजय अल अब अब अपु अजु अनास काश गंज पंज लख पख काल दयाल अलेख पेख अनाम काम गाटा नाथ ब्रह्माथे अजो नियमो निराग न रंगे न रूप न रिख कर्मग परमग गंजे अलेख भुजंग प्रिया छंद नमस्त प्रणाम समस्त प्रणाम से अगंजल नाम समस्त निवास निकाम बपुते समस्त स्वरूप कुकर्म प्रणासी धर्म बपुते सदा सचदानंद सदृंग प्रणासी करीमुल कनिंदा समस्त निवासी अजाय बपुते गजाय घनि में हरियंग करियंग करीमुल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र पुगते स्वयं

ता प्रसाद स्वयं एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाह दसवें ता प्रसाद स्वयं सुरावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख प्रयोग कर जोग जति के सुर सुरार्धन शुद्ध सुधाय देख संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे अमर को न देख प्राण पति के श्री भगवान के भाई कृपा उथे कृति बने कृति के माते में तंग जरे जर संग अनुप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग रंग से कूद पौन

पाई हमरे करो आद्य रचा पूर्ण हो चेत की इच्छा तब चरण मंद रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दृढ़ सब आपादे मोह बचाव सुखी बस मोर परिवार सेव सुख सभे करता रहा मोर चन करता करिया सब बैरण को आय सुंगरिय पूर्ण हो हमारी आशा तो भजन की रह प्यासा तो मैं चढ़ को वरना त्याऊ जो बचाऊ सो तुम ते पाऊ सेव सुख हमारे तारियां चुन चुन सतरा हमारे मारिय आपा दे मुझे अभरिया मन काल का त्रास मर जाओ जो सुधा हमारे पचास रिया जो करियो रचा रख लो मोह रख नारे साहेब संत सुहाय पिया।

शुक्ल प्रदाज ने आप सुबारे सेवकन को सावकन सुख दियो सदरण को पन मोहम्मद की ओ कट कट के अंदर के जान भरे भरे की पीर बचानत चेटे दे कुंचरिया सोला सबर कृपा कर भूला संतन पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक बीर बचाने कट कट के पटपट की जान जावज कर करा करता।

तुमरा लखन जाय पसारा कह सजा प्रथम संसार आय कह रूप अनुस्वरूप रंग प्यो राव कह प्यो पांडा जय से खान भाव रच देनी कहो बोल राजा अवे बैठा को सुन पे अब शंकर अकेठा सगरी सिर दिखाए अचंभव आज गा स्वरूप सियाम भाव अब रचा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग रो दुष जित उठो पाता सगल मिले करो रण काता जी अतो तब सरणी पर तिनके दुष दुख हवा मरा पुरख जवन भग परे।

निरंजन के मन वस्या वाद्य शब्द कनेरे कह नानी सच्चे साहब क्या नाही करते रह सच्चा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन पुखा सब गईया कर शांत सुख माने आय वस्या जन इच्छा सब जाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जी दिया बढ़िया कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दो तदवास किते काल कंट को मारिया तुर करम पाया तो जिन को सेना मर कह लागे कह नानक तै सुख तित कर न दवाजे साचिर वे बंदे नमाणी देर मणि लिवे बाजो क्या करे बेचारिया तुदबाज सम्र

करे प्यारिया कर कृपा कृप कट ज्ञान अंजन सारिया अंदर दिन का मोह तुटा दिन का शब्द सच सुवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जे तुझे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जे सुन क्या कर है बेचारे एक परम पुले फिर है दह दिसक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन

कर मन जन अमृत खोज देसु अमृत गुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा के ने सच्चा मनुसाया दी जन सब तो दिया पैग वेग प्रश्न आया लाभ लोभ अहंकार चुका सुगुरु भला पाया कह नान जिसनो आप सुटा तन अमृत गुरते पाया।

पिता कुटुंब से सुप सिंह सबाई कहंदे पवित्र सुंदर से भजन मनुसा कह नान से भजन गुरम करार त्याय कर्म सहज न पूजे बिन सहज सचानंद आय न जाय सहसा कित संजम राय कर्म कमाए सह सह ज्यो मलिना के संजम तोता जाए मन तो वो शब्द लागो और सुरहो चित लाय कह नानक गुरु प्रसाद सहज उपजे सह सब जाए जियो मैले बारो निर्मल बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिन जन्म जुए हर तिसना वड्डा रोग लगा मन मनो विसारे वेदा में नाम तुम सो सुन नाय प्रे ज्यो बता लिया कह नानी दिन सच तजा कूड़े लागे तिन जन्म जुए हर जियो निर्मल बारो निर्मल बारो तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पोचे नाई मन सा सच सुमाणी जन्म रतन जन कट बल से बंजारे कह नान जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जे को सिख गुरु सति शर्म को वेता शर्म से कोई जी ओ रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय ताय अंतरात्मा सुमाले आप चढ़ सदा रे प्रणय गुरु बने अब न जाने कोय कह नानक सुनो संत हो सो सिख शर्म कोय जे को गुरु ते वे मकोवे बिन सतगुरु मुक्त न पावे पावे मुक्त न उठे कोई पुछो पवे किया जाए अनेक जोनी पर में आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सात गुरु सब सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आ बहो सिख सत गुरु के प्यारे गा बहो सच्ची बाणी बाणी तंगा वो गुरु के रि बाणिया सिर बाणी जिन को नदर कर्म होवे हृदय न समाणी पी बहु अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारे बाणी कह नानक सदा गा वो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी तंग जी सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख बखाणी हर हर नित कर रचना कह कछु न जाने चजन कर लिया माया बोरन पैर वाणी कह नानक सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन आई रे जित जड़ाओ शब्द रतन जतन मन लागा ए हो आसमाओ सब स्थिति।

न जाने तत्ते सार न जाने गुरु बाजो तत्ते सार न जाने ते ही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन वेणी गुरु कृपा ते से जन जागे जन हर मनुष्य बोल है अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनु अंत न लिव लागे जागत रहन वेणी माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है।

सच सबना का कसमै जे बक्से सो जन पावे कह नान सच सोहिला सच्चै कर गावे अनसुनो बड़ भाग्य सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे।

परगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। जो तेरा मन सुने, धन गुरु अमरदास महाराज हर कथा तू सुन रे मन, मन तू सुननी है। ये गल वखरी कि सुनी कन्ना रही जाने, शब्द मन वसाए फिर सुन के उन्हों अपने मन विच सौना है। यह मत तेरी थिर रह ता भरम विच हो जाए, फिर तेरी यह मत टिकी रहेगी, फिर तेरे भरम

जैसी अग्निद्र में तैसी बाहर माया माया अग्न सब एक जही करता खेल रचाया जा तिस पाना ता जमया परिवार भला।

0: सोठ महला पांचवा हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तुम दाता हम मूर्ख तुम चतुर
1: श्याण तुम सर्व कला का ज्ञाता
0: मातो हम ऐसे तुम ऐसा मातो हम ऐसे तुम ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन
1: निको ठाकुर देसा
0: हम पापी
1: तुम पाप खंडन निको ठाकुर देसा रहा तुम सब साजे साजे निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम भलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई

0: मेरा मन बिलास भय साहिब के अचरज देख बढ़ाई
1: हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूर्ण पैज रखाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूर्ण पैज रखाई क्या श्री शान गोविंद देव मकर

0: राज मिल खुशियां कणी त्यार मुख न मोड़े, राज मिल खुशियां कणी त्यार मुख न मोड़े, टाटी दर प्रमंगणा दर कदे न छो, टाटी दर प्रमंगणा दर कदे न छो, नानक मंतन चाव एहो नित प्रभु को लो, नानक मंतन चाव एहो नित प्रभु को लो।
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब, तू ही निरंकार है, तू सदा सलामत निरंकार, तू ठाकुर उच्च भगवान, नानक की प्रा बेनती अपनी भगती लाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तुम
0: धन
1: धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद
0: सिंह जी महाराज,
1: धन धन गुरु ग्रंथ साहब
0: जी महाराज,
1: धन धन गुरु ग्रंथ साहब
0: जी,
1: धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नंद
0: सिंह जी महाराज,
1: कोट कोट पढ़ना भुल चुक मा तेरे चरण कमला पास, बहुत बहुत धनबाद, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा भला, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह, जो बोले सो ध्यान, सत श्री अकाल
2: सतनाम।

कर्म वसे मन आए सतनाम श्री वाहे गुरु जीओ टोडे महला पंजवा कर पंजवा दो पदे एक ओंकार

गणपत्र द्वितीयमल कौशिकीय लंग रागनी पंचोत्थप गौण करी अरदेव गंधारी गंधारी सेहतीचारी तनाश्रिय पंचो गाय मल रा कौशक संग लाई मारू मस्त्य अंग में वारा परवर चण कौशिक पारा खो खट पर गाय अष्टमाल कौशक संग लाई।

दियो। भगत सतगुरु पुरख सोई जे सर प्राप पाणा पावे आनंद अनद वजे वजे हरि आप गल मिलावे। तुसी पुत पाई परिवार मेरा मन वेखो करन जा दियो। तुर लिखिया प्रवाणा फिरे नाही गुरु जाए हर प्रपा दियो। सतगुरु भाणे अपने बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोप से सो मैं मूल न पाया। मित पैज मित बिकसै जस मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु।

0: दीना।
1: हर हर जन कहे उठ सताने,
0: हर प्रताप जन अवर न जाने।
1: बोध बोध जन हर रस राते,
0: स्वर्ण समाद नाम रस माते।
1: आठ पैर जन हर हर जपे,
0: हर का भगत प्रगट नहीं छपे।
1: हर की भक्त मुक्त भाव करे,
0: नानक जन संकेते तरे।
1: पार जाते हर को नाम,
0: नाम देन हर हर गुण गाम।
1: सबते उत्तम हर की कथा,
0: नाम सुनत दर्द दुख लथा।
1: नाम की महिमा संत हृदय बसे,
0: संत परताप दर्द सब नसे।
1: संत का संग बड़ भागी पाई।

0: पूर्ण भावे
1: महामुजार्त पूज्य ढोरा
0: निष्कय तो समझे पूरा
1: काम सिन पद गावे गंग
0: जतन करे तो भी सर्पंग।

0: उठत बैठ सत्य
1: सेत्याई जो एक रखे
0: नानक तेरी रखे
1: प्रसाद करे पुन बोधान
0: मन हाथ पैर कर तिसका ध्यान
1: प्रसाद तू चार व्यवहारी
0: तिस प्रभु को सास सास सिखाई
1: प्रसाद।

0: परमानंदा
1: साच संग नाही हो ताप
0: सार के संगत जय सब आप
1: पे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साच संग न कब हूं तावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस्त उचर लह
0: साधु कै संग अजर सह
1: साध संग उसे थान उचे
0: साधु कै संग महल पहुंचे
1: साध के संग दृढ़े सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान
0: नानक साधु कै कुर्बान
1: साध के संग सब कुल उधारे
0: साध संग साजन मीत कुटुंब ने सारे
1: साधु कै संग सोतन